0: हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, थोड़ा होस्ट ते थोड़ा दोस्त, अमरीका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना दे शहर टोरंटो। जी दोस्तों, आ तुसी सुन रहे हो www.parvazradio.com खेड़ा लाइव शो, जानकारियां भरपूर। दोस्तों, आज असी गुरु रविदास जी दे बारे दे विच थोड़े नाल कुछ जानकारियां दी सांझ पावांगे जी, ते उना दे शब्दां नूं आवाज देणगे दिल्ली तों आराधना सिंह जी, जो के बहुत ऐसे कट सिंगर हन, गायक हन, जो के गुरु रविदास जी दे 41 दे 41 शब्दां नूं गाउण दे विच महारत हासिल करदे हन जी। आराधना सिंह जी जो दिल्ली विच रहिंदे हन, उना दे विचो एक है जी, ते अज असी उना दे मुखारबिंद तों श्री गुरु रविदास जी दे कुछ शब्दां दी सांझ तुहाडे नाल पावांगे जी। साडे नाल जुड़ चुके हन जी आराधना जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम परवाज रेडियो दे प्लेटफॉर्म दे उत्ते जी।
1: सत श्री अकाल सर, आप जी दा भी वेलकम भारत दी राजधानी दिल्ली च, और जितने साडे सुनने वाले ने श्रोता, आप सब नु बड़े अदब बड़ी आदरी नाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।
0: जी वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जी आराधना जी, अज असी जिवें कि असी मैं दस्या है प्रोग्राम दे विच कि असी श्री गुरु रविदास जी दे शब्दां दी सांझ पावांगे अपने स्रोतियां दे नाल जी। इस तों पहलां कि असी तुहानू अनुरोध करिए पहला भजन जां शब्द सुनाण दा, मैं कुछ तुहानू दसना चाहुंदा हां कि श्री गुरु रविदास जी भारत दे महान संत, कवि ते समाज सुधारक सन, जिन्हां ने जात पात दे भेद नूं खत्म करन अते मनुखी समानता दा संदेश देण लई अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कीती। उन्हां दा जन्म वाराणसी दे विच, जो कि अजकल बनारस वजदा है, विच होया सी, ते उह चमड़े दे काम नाल जुड़े परिवार विच पले बड़े। बचपन तो ही उह रब दी भगती विच लीन रहिंदे सन अते लोकां नूं सच्चाई, निरपयता ते भगती दे राह ते तुरन लिए प्रेरित करदे सन। गुरु रविदास जी दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, जिस विच 41 भजन शामिल हन, जो अज भी लोकां नूं रूहानी चानण प्रदान करदे हन। उह भगती अंदोलन दे महत्वपूर्ण संत सन अते मीरा बाई वर्गे महान भगत उन्हां तों प्रभावित होए। गुरु रविदास जी ने कहा कि रब दी भगती ही सब तों वड्डी है ते मनुखी जीवन दी सफलता दा राह है। उन्हां दी सिख्यावां अज भी समाजिक न्याय, समानता ते मनुखता लई प्रेरणा दा स्रोत हन। जी आराधना जी, जी फरमाओ जी, साडे स्रोतियां दे सामने अपना पहला गुरु रविदास जी दा शब्द केड़ा सुनना चाहोगे जी?
1: जी सर, वैसे तो सर 8 शब्द मैं रिकॉर्ड किते हुए ने और बाकी दी रिकॉर्डिंग वास्ते ड्यू ने रखे हुए ने, और मैं गुरु रविदास महाराज जी दे श्लोक तो शुरू करांगी और आप जी नु एक एक करके जिस तरह भी आप जी दा हुक्म होगा उस शब्द सारे श्रवण करांगे। गुरु प्यारी साध संगत जी जुड़ गए होने ने, कई लोकी बिजी भी होने हैं, लेकिन रेडियो सुनिया जा सकता है क्योंकि रेडियो एक ऐसा सोहना माध्यम है कि ये वाल ना भी देखिए तद भी करना नाल अस श्रवण कर सकते हैं, कोई भी गलबात, कोई भी विचार, कोई भी शब्द, कोई भी भजन। सो मैं सतगुरु महाराज गुरु रविदास महाराज जी की मेरे से बड़ी अपार कृपा है, और मैं चाहनी हूं कि सतगुरु महाराज जी मेरी अरदास है कि जिन्नी सृष्टि है सतगुरु महाराज जी की सारिया ते मेहर भरिया हाथ हो गए, उन्हां दा आशीर्वाद होवे, ताकि असी अपने हर घर च ये बाणी सुना सकिए, ये गा सकिए और बाणी दे मुताबिक ही अपने जीवन नूं सार्थक कर सकिए। सो मैं श्लोक गा करके, और मेरी छोटी जी कोशिश है और उम्मीद करती हैं कि आप सब इनू हुंगारा दोंगे और पसंद करोगे, ऐसी आशा है। सो आओ आप शुरू कर दें। खेड़ा साहब, आज बहुत बहुत आप जी का अनेक अनेक धन्यवाद है कि आप गाए बगाहे साडे वर्गे छोटे बंदे नूं भी अपने ਚਰਨਾਂ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਭਾਰੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚ ਅਸੀਂ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਇਹ ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਨਾ ਤੋਂ ਸਰ ਅਬ ਪਤੀ ਅਰ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਰ
0: ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।

जी दोस्तो, गुरु रविदास जी की बाणी वक वक रागां विच दर्ज है। जिवें कि श्री राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है, गौरी राग दे विच पांच शब्द, आसा राग दे विच छे शब्द, गुजरी राग दे विच एक शब्द, सोरठ राग दे विच सत शब्द, तनासरी राग दे विच तीन शब्द, जैतसरी राग दे विच एक शब्द, सूही राग दे विच तीन शब्द, बिलावल राग दे विच दो शब्द, गौंड राग दे विच दो शब्द, रामकली राग दे विच एक शब्द, मारू राग दे विच दो शब्द, केदारा राग दे विच एक शब्द, भैरव राग दे विच एक शब्द, बसंत राग दे विच एक शब्द, ते मलार राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है जी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज हन। उन्हां दे कुछ प्रसिद्ध शब्द जेडे है वह है, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, तू मैं हां मैं तू हां साडे विच की फर्क है। जिवें कि बेगमपुरा शहर का नाम, बेगमपुरा शहर का नाम है जिथे कोई गम नहीं, मेरी संगत पोच पोच दिन राती, मेरी संगत हमेशा रब दे नाम विच लीन रहिंदी है, संत तुझी तन रंगत प्राण, संत दी भगती नाल ही जीवन सुखी हुंदा है, तुम चंदन हम इरंद बापुरे, तू चंदन है मैं एक छोटा जिहा बूटा हां। जी दोस्तो, साडे नाल दिल्ली तो आराधना सिंह जी जुड़े हन, जो कि इकताली दे इकताली शब्द उन्होंने गाए हन, उन्होंने याद किते हन, ते असी उन्हां दा ते एक शब्द थानू असी सुनाने हां, जो कि क्योंकि वो साडे नाल लाइव होके गा रहे हन, ते असी उन्हां दा एक रिकॉर्डेड जिहड़ा शब्द है वह थानू सुना रहे हां जी। जी सुनो जी।

0: చెవి విదేశ్నబూచు చెవి
1: हां जी कहंदे हर सो हीरा छड के करे आदमी आस जो इंसान कीमती रब नु छड के किसी होर उते आस रखदा है ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास उस दी जिंदगी नरक है ए गल असल रविदास दसदा है जी भगत कबीर जी कहंदे हन गुरु ग्रंथ साहब दे अंग 1377 दे विच कई फाजल मानदे हन कि श्री गुरु नानक देव जी ते गुरु रविदास जी दी मुलाकात हुई है पर असल जगह ते अरसे बारे तकरार है। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच गुरु रविदास जी दे 41 वाक 16 रागां विच दर्ज हन। इस तो अलावा रैदास जी की बाणी नाम दी एक हाथ लिखत किताब नागरी प्रचारणी सवा कोल मौजूद है। भाषा विभाग पंजाब ने भी इन रचनावां नूं बाणी सतगुरु रविदास जी दे सरलेख अधीन 1984 विच पब्लिश कीता। गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद सतगुरु रविदास जी दे 40 शब्द ते एक सलोक नूं काबले इतबार दा खिताब हासिल है जी। गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद सतगुरु रविदास जी दी बाणी दे सफे हन अंग 93 अंग 345 तो 346 तक अंग 486 तो लैके 487 तक अंग 525 अंग 657 तो लैके 659 तक अंग 694 अंग 710 अंग 793 तो लैके 94 तक अंग 858 तक अंग 875 अंग 973 तो 974 तक अंग 1106 अंग 1124 अंग 1167 अंग 1196 ते अंग 1293 दे उत्ते श्री गुरु रविदास जी दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है जी। जी कहते हुण असी अगर असी सफर दी करिए गुरु रविदास जी ने दक्षिणी एशिया द्वारे 6 सफर किते उन्होंने ते इस तो पहला सफर सीगा गुरु रविदास जी ने ते परमेश्वर कबीर

माटी को उतरा कैसे नचत है, माटी को उतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरियों फिरत है।

0: मटी पुत्रा कैसी नचत है, मटी को पुत्रा कैसी नचत है, मटी को पुत्रा कैसी नचत है। जय गुरु जी।
1: हां जी, गुरु रविदास जी दा समाज ते प्रभाव बहुत ही गहरा ते क्रांतिकारी सी। उन्होंने जात पात दे भेदभाव नूं चुनौती दित्ती अते मनुखी समानता दा संदेश दित्ता, जिस नाल दबे कुचले वर्गां नूं आत्म सम्मान ते हक लई खड़ा होण दी प्रेरणा मिली। उन्हां दी गुरबाणी ने लोकां नूं रस्मां ते अंध विश्वासां तों मुक्त करके रब नाल सिद्धी भगती दा राह दस्या। बेगमपुरा वर्गे शब्दा राही उन्हां ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिस विच कोई गम नहीं, कोई जात पात नहीं, सब नूं न्याय मिलता है। उन्हां दे उपदेशां ने भगती अंदोलन नूं मजबूत किया। मीरा बाई गुरु नानक वर्गे महान संतां नूं प्रभावित किया। अज भी गुरु रविदास जी दीआं सिखियावां समाजिक न्याय, समानता अते मनुखता लई प्रेरणा दा स्रोत हन अते लोकां नूं भाईचारे ते रूहानी चानण वल तुरन लई प्रेरित करदियां हन। जी दोस्तो, नमस्ते, सलाम। अज दे खेड़ा लाइव शो दे विच बस इन्ना ही। आराधना जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं अपने कीमती समें दे विचों समां कढ़िया ते श्री गुरु रविदास जी दे शब्दां राही साडे स्रोतियां नूं निहाल कीता। जी असीं आशा करदे हां कि साडी इह सांझी कोशिश तुहानूं पसंद आई होगी। जी आराधना जी, लास्ट एक मिनट विच की कहना चाहोगे?
0: जी मैं यही कहना चाहांगी कि गुरु रविदास महाराज जी दे चरणां च सारे जिन्नी सृष्टि दे लोक ने सारी संगत जुड़ी रहे और बाणी सुनदे रहन, बच्चा नूं भी सिखाउण और घर घर बाणी सुनाई जावे, बच्चा नूं भी सिखाई जावे, आप भी सुनिया करो। बाणी तो बद के मैनू कोई भी लिरिक्स अच्छा नहीं लगता, वैसे प्रोफेशन है साडा गाना बजाना सर, इस करके गीत गजल भजन गाई दी, लेकिन जो शब्द बाणी च आनंद है ना, सिक्ख्या भी है और तुहानू बल भी मिलता है और पूरी तुहानू ऊर्जा मिलती है बाणी पढ़न नाल। ते मैं तो यही कहांगी कि बाणी पढ़िया करो, सुनिया करो और एक दूसरे नाल बाणी बारे ही चर्चा होनी चाहिए। आप जी का अनेक अनेक धन्यवाद, तुसी इन्ना समय मैनू दिता अपने अनमोल समय चो, और मैं प्रभात रेडियो दी हमेशा आभारी हां, हमेशा आभारी हां और हमेशा आभारी रहांगे। और साडे जिहड़े श्रोता सुन रहे ने, आप सब नूं बड़े अदब बड़ी आदती नाल सति अकाल, और इसे तरह तुसी प्रभात रेडियो नाल जुड़े रहो, साडे खेड़ा साहब जी दे नाल प्रोग्राम सुनदे भी रहो और अपनी गल भी अपने विचार भी सांझे करिया करो। मैं तो यही कहूंगी सर, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद आराधना जी, धन्यवाद जी। हां जी दोस्तो, बस खेड़ा लाइव शो दे विच बस अज इन्ना ही, फिर एक नवा प्रोग्राम जानकारियां भरपूर लैके थोड़े नाल असी जुड़ांगे जी।

से छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तारा।

0: वाजिबा बालको बालको
1: आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी मैया तो प्यार दूं, इसलिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यास, इसलिए इसलिए आजा पिया।

जी दोस्तों, गुरु रविदास जी की बाणी वख-वख रागों में दर्ज है। जिवें कि सिरी राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है, गौरी राग दे विच पांच शब्द, आसा राग दे विच छे शब्द, गुजरी राग दे विच एक शब्द, सोरठ राग दे विच सत शब्द, तनासरी राग दे विच तीन शब्द, जैतसरी राग दे विच एक शब्द, सूही राग दे विच तीन शब्द, बिलावल राग दे विच दो शब्द, गौंड राग दे विच दो शब्द, रामकली राग दे विच एक शब्द, मारू राग दे विच दो शब्द, केदारा राग दे विच एक शब्द, भैरव राग दे विच एक शब्द, बसंत राग दे विच एक शब्द, ते मलार राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है जी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज हन। उन्हां दे कुछ प्रसिद्ध शब्द जेडे है वह है, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, तू मैं हां मैं तू हां साडे विच की फर्क है। जिवें कि बेगमपुरा शहर का नाम, बेगमपुरा शहर का नाम है जिथे कोई गम नहीं, मेरी संगत पोच पोच दिन राती, मेरी संगत हमेशा रब दे नाम विच लीन रहिंदी है। संत तुझी तन रंगत प्राण, संत दी भगती नाल ही जीवन सुखी हुंदा है, तुम चंदन हम इरंद बापुरे, तू चंदन है मैं एक छोटा जिहा बूटा हां। जी दोस्तों, साडे नाल दिल्ली तो आराधना सिंह जी जुड़े हन, जो कि इकताली दे इकताली शब्द उन्होंने गाए हन, उन्होंने याद किते हन, ते असी उन्हां दा ते एक शब्द थानू असी सुनाने हां, जो कि क्योंकि वो साडे नाल लाइव होके गा रहे हन, ते असी उन्हां दा एक रिकॉर्डेड जिहड़ा शब्द है वह थानू सुना रहे हां जी। जी सुनो जी।

माटी को उतरा कैसे नचत है, माटी को उतरा कैसे नचत है। देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है, देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है, माटी को

0: हां जी, गुरु रविदास जी का समाज ते प्रभाव बहुत ही गहरा ते क्रांतिकारी सी। उन्होंने जात पात दे भेद भाव नू चुनौती दित्ती अते मनुखी समानता का संदेश दिता, जिस नाल दबे कुचले वर्गां नू आत्म सम्मान ते हक लई खड़ा होने की प्रेरणा मिली। उन्हां दी गुरबाणी ने लोकां नू रस्मां ते अंध विश्वासां तों मुक्त करके रब नाल सिद्धी भगती का राह दस्या। बेगमपुरा वर्गे शब्दां राहीं उन्हां ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिस विच कोई गम नहीं, कोई जात पात नहीं, सब नू न्याय मिलता है। उन्हां दे उपदेशां ने भगती अंदोलन नू मजबूत किया। मीराबाई गुरु नानक वर्गे महान संतां नू प्रभावित किया। अज भी गुरु रविदास जी दीआं सिक्ख्यावां समाजिक न्याय, समानता अते मनुखता लई प्रेरणा दा स्रोत हन अते लोकां नू भाईचारे ते रूहानी चानण वल तुरन लई प्रेरित करदीआं हन। जी दोस्तो, नमस्ते, सलाम। अज दे खेड़ा लाइव शो दे विच बस इन्ना ही। आराधना जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं अपने कीमती समें दे विचों समां कढ़िआ ते श्री गुरु रविदास जी दे शब्द राही साडे स्रोतियां नू निहाल कीता। जी असीं आशा करदे हां कि साडी इह सांझी कोशिश तुहानू पसंद आई होगी। जी आराधना जी, लास्ट एक मिनट विच की कहना चाहोगे?
1: जी मैं यही कहना चाहांगी कि गुरु रविदास महाराज जी दे चरणां च सारे जिन्नी सृष्टि दे लोक ने सारी संगत जुड़ी रहे और बाणी सुनदे रहन, बच्चा नू भी सिखाउण और घर घर बाणी सुनाई जावे, बच्चा नू भी सिखाई जावे, आप भी सुनिया करो। बाणी तो बच के मेनु कोई भी लिरिक्स अच्छा नहीं लगता, वैसे प्रोफेशन है साडा गाना बजाना सर, इस करके गीत गजल भजन गाई दी, लेकिन जो शब्द बाणी च आनंद है ना, सिक्ख्या भी है और तुहानू बल भी मिलता है और पूरी तुहानू ऊर्जा मिलती है बाणी पढ़न नाल। ते मैं तो यही कहांगी कि बाणी पढ़िया करो, सुनिया करो और एक दूसरे नाल बाणी बारे ही चर्चा होनी चाहिए। आप जी का अनेक अनेक धन्यवाद, तुसी इन्ना समय मैनु दिता अपने अनमोल समय चो, और मैं प्रवास रेडियो दी हमेशा आभारी हां, हमेशा आभारी हां और हमेशा आभारी रहांगे। और साडे जेडे श्रोता सुन रहे ने, आप सब नु बड़े अदब बड़ी आदरदी नाल सत श्री अकाल, और इसे तरह तुसी प्रवास रेडियो नाल जुड़े रहो, साडे केड़ा साहब जी दे नाल प्रोग्राम सुनदे भी रहो और अपनी गल भी अपने विचार भी सांझे करिया करो। मैं तो यही कहूंगी सर, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद आराधना जी, धन्यवाद जी। हां जी दोस्तो, बस खेड़ा लाइव शो दे विच बस अज इन्ना ही, फिर एक नवा प्रोग्राम जानकारियां भरपूर लैके थोड़े नाल असी जुड़ांगे जी।

गुरुस्वारे सत्कार योग गुरु खालसा जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दाए 22 नवंबर 1998 दा दिन गुरु नानक नाम देवा गुरु सिख संगतां वास्ते अत्यंत सुभागा दिन है, जिस दिन अमृत दे दाते सरबंसदानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते पावन चरण कमलां ते कौतकां राही पवित्र होई इस धरती ते गुरु खालसा पंथ ते 300 साला साजना दिवस की स्वयमान परी याद में सदी भी बनाउण लई खालसा विरासत यादगारी कंपलैक्स की उसारी का आरंभ किया जा रहा है। इस धरती में 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर हजूर ने खरीद के अपनी पूज माता नानकी जी की याद में चक माता नानकी का नाम दिता है। इस धरती का पहला ते संसार का सब तो अदुती कौतक यह होया कि 9 साल की संसारक उम्र दे गोविंद राय जी ने अपने पूज पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने दर ते आए कश्मीरी पंडितों की बेनती ते समुची मानता ते विशेष करके हिंदुस्तान वासियों की धार्मिक सभ्याचार ते समाजिक आजादी बरकरार रखने लई शहादत वास्ते दिल्ली भेजिया। इसी दिल्ली तो कुछ अरसे पिछों 9वें पातशाह हजूर का गुरु प्यारे सिख भाई जेता जी राही केवल सीस ही लिया गया सी। इस पिछों तां लासानी रूहानी कौतकां दी चढ़ी ही लग गई सी। गुरु पिता वालों इस तरह संसारी मनुखां नूं अणगैरत वाली आनंदमई जिंदगी लई अपना सीस कुरबान करन उपरंत गुरु दर तों आनंद प्राप्ति दी रीझ रखण वालियां ने गुरु नूं सीस भेट करन दा अमुक प्रवाह चला दिता। शायद इसे लई इस धरती दा दसम पातशाह जी ने नाम ही आनंदपुर रख दिता। ओह पुरी जिथे आ के कोई भी अपने सतगुरु दे सन्मुख हो के गुरु दी मत विच जीउंदे आ, गुरु दे तप तेज दा तारनी बन के खालसे दे रूप विच आनंदमय जिंदगी जीउ सकता है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने 1699 दी विसाखी ते खंडे बाटे दी पावर राही सीस भेट करन वाले 5 गुरसिखां नूं अपने प्यारे कह के अपना सब कुछ अर्पित करदे आ, आप उन्हां अगे सीस निवाउंदे आ, आपे गुरचेला दा लासानी कौतक कीता। फिर हजारां दी गिणती विच अपने दर ते आउण वालियां नूं गुरु खालसा पंथ दा नाम दे के निवाजदियां होयां इह वचन उचारे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोर परे। इसे गुरु खालसा पंथ दे बोल वाले इस पंथ राही सरबत दे भले दे कार्ज लई गुरु पिता ने अपने समेत अपना समुचा परिवार कुर्बान कर